0: No es para
1: decir. JK Tire.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Tell you that a week back there were four different zones of Gujarat, from Saurashtra, South Gujarat, Central Gujarat, North Gujarat. There were jals, which are the water, holy water, which was been brought from different places, and all this water is now been brought over here at Sarmishtha Talao. And some of the holy water will be taken out from the Sarmishtha Talao, and a jal abhishek will be done at the Hatkeshwar temple. This is a very important temple here at Vadnagar. And after the jal abhishek is done at the Hatkeshwar Mahadev temple, there will be a bike rally. Let me tell you, there will be a set of over 10 different groups, 25 bikers in one group. They'll be traveling all the way to Varanasi, and this holy water will be taken to Kashi Vishwanath temple. So it's a very important program. They will be telling the life story of Prime Minister Narendra Modi, his political journey, his social work, and all the different blood camps and different organizations will be coming together, and it will be a month long program. Here you can clearly see that this is exact place in between, exactly at the Sarmishtha Talao. Union Home Minister Amit Shah will be present. There will be also Maharashtra DCM Eknath Shinde, Anupriya Patel, and several other ministers who will be present over here. They will be doing an jal abhishek over here. There will be also a lot of mantropchar which will be done at this particular place. And after which, the jal abhishek will be done at Hatkeshwar temple, and then the bike rally moves to Kashi Vishwanath in Varanasi. So it's a very long program. Union Home Minister earlier was in Ahmedabad. There were a lot of cleanliness program which was going on there. Different blood donation camps which are going on, that are done. Now he'll be traveling over here in Vadnagar, and bike rally and jal abhishek program are scheduled over here. And let me tell you, around this particular talao, this Sarmishtha Talao, there are different locations made wherein the locals of Vadnagar who are coming over here, they will be watching this particular program live. There are also different screens which are made over here, so that who cannot watch this program live, because there's a lot of crowd which is continuously coming in, they can see it through the LED screen. So a lot of arrangements being done at Prime Minister Narendra Modi's birthday over here at his birthplace in Vadnagar, and NDTV is bringing you live updates, live telecast from Vadnagar.
1: Saurabh, so we're talking about, you know, NDA allies in Varanasi to bike rallies that you mentioned, to Seva Sankalp Abhiyan, which starts from today and goes on for a month, in fact, till the 17th of October. We're talking about a series of service-oriented programs and public outreach initiatives. Saurabh also spoke with the teacher of Prime Minister Modi. Let's listen in to what Prime Minister Modi's teacher had to say.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और इस मौके पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके टीचर एच सी पटेल सर. पटेल सर, किस तरीके के पीएम मोदी स्कूल में रहा करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर जो आप साझा कर सके.
2: मैं बोला फ्रॉम जून 65 टू मे 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा, दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस, गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया. वो समझते थे प्रॉफिट और लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने मलाया, नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
0: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद अब पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एके अडवाणी, ये पूरा पद, वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए, उनकी सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते दौड़ते, तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल, दशरथ भाई डी एल पटेल, हमारे दीदा में के कर्मचारी, वो ग्यारहवीं कक्षा में थे, वो साथ से पढ़ते थे. ओ नरेंद्र भाई, वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
0: पीएम मोदी को आप कब से जानते हैं?
3: हम बचपन से, यानी धोरण चार से हम साथ में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है उसी के अंदर द्रोण 4, 5, 6 और 7 तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया।
0: मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्राइमरी स्कूलिंग से साथ में?
3: हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से ही द्रोण 4 से हम साथ में हैं, 4, 5, 6 और 7 तक प्राइमरी स्कूल जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है उसी के अंदर हमने साथ में एजुकेशन लिया। आरएसएस की फी दे के हम मेंबर बने, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते 3 दिन के बाद मेरा रुपया वापस आया और मैं मेंबर न बन सका। लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने मुझे बताया जब तुझे नहीं बनाते तो मैं भी मेंबर नहीं बनता। लेकिन मैंने बोला कि भाई तेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है, मेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है। आरएसएस वाले अपनों को 2 चड्डी देते हैं 1 रुपये में, तो 2 चड्डी लेके आओ, 1 चड्डी मुझे देना। तो मोदी साहब बहुत हंसे बचपन में और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं। और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब CM थे तब मैंने गुजरात के अंदर उनके ऑफिस में ये बात लगाई थी और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है कि 1 चड्डी की मैं लेने के लिए तुमको RS में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा। लेकिन मैं मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका।
1: And let's just also get you details of how the country is celebrating Prime Minister Modi's 76 years of his birth and also 25 years of him in public service. So ahead of that birthday celebration, the BJP workers in Kolkata's Kali Ghat marked the occasion with 76 kilograms of milk abhishek. Prime Minister Modi's portrait was put in milk, literally giving him a bath in milk as far as that portrait is concerned, and as supporters gathered to celebrate his birthday in a very symbolic gesture. And then switching tracks to how in Tamil Nadu a chef has served up a birthday tribute with a healthy twist. We're talking about 76 varieties of naturally prepared food that was displayed for Prime Minister Modi's birthday. The chef also carved portraits of Prime Minister and his mother on a watermelon. And going to Ahmedabad, where Prime Minister Modi's birthday celebration took a women-centric turn. A special event promoting women's empowerment saw participants posing for selfies with the poster of the Prime Minister, with banners under the theme Gau Man Ki Shakti, Sanskriti Ko Salaam.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: Prime Minister Modi understands dosti. He understands that friendship has to mean something. For the Maldives, it has. India has been there when we needed a friend. In emergencies, in difficult moments, during the pandemic, in our development journey, time and time again, India has been our first responder and most dependable partner. 25 years in public leadership is an extraordinary milestone. But for me, the story of Narendra Modi is also told through the relationships he has built along that journey. You have been a true friend of the Maldives. Congratulations on this remarkable milestone. I wish you good health, continued strength, and every success in the years ahead.
1: रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग

0: Let's get to our top story, and that's India celebrating Prime Minister Modi's 76th birthday with nationwide service initiatives and public events. Do remember, this is the picture coming out of Semicon that has been inaugurated by the Prime Minister himself on the occasion of his 76th birthday. This is a three-day event that is taking place here in the national capital. 50,000 visitors are expected. We're talking about number of countries that are participating, and basically the goal is the ecosystem around semiconductors. We also have on the other side Amit Shah, who's going to be flagging off that bike rally from Vadnagar, that is the hometown of Prime Minister Modi, where he grew up, spent his childhood, faced a lot of struggles, to Varanasi in Uttar Pradesh, and that is the area, the place that is his constituency of Varanasi, where that bike rally, which is going to cover about 40,000 kilometers and span over 10 states, is going to culminate on the date of the 7th of October, when the Prime Minister, when Narendra Modi became the Chief Minister of the state of Gujarat 25 years ago. So this doesn't mark just the 76th birthday of the Prime Minister, but also 25 years of being in public service, starting with being the Chief Minister of Gujarat to being the Prime Minister over the last 12 years of the country.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके टीचर एचसी पटेल सर. पटेल सर, किस तरीके के पीएम मोदी स्कूल में रहा करते थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर जो आप साझा कर सके.
2: मैं बोला फ्रॉम जून 65 टू मे 67 स्टैंडर्ड 10 एंड 11 दसवीं और ग्यारहवीं कक्षा दो साल तक उनको मैंने मैथ्स और साइंस गणित और विज्ञान पढ़ाया है. वो मैथमेटिक्स में वो प्रॉफिट लॉस का मैंने इलस्ट्रेशन दिया. वो समझते थे प्रॉफिट लॉस 10% 20% हो सकता है. मैंने बोला नहीं नरेंद्र भाई, प्रॉफिट और लॉस 300% भी हो सकता है, 400% भी प्रॉफिट हो सकता है.
1: वडनगर से निकलने के बाद क्या कभी आपको, पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगा था कि कभी नरेंद्र मोदी सीएम बन पाएंगे, सीएम के बाद आप पीएम बन गए?
2: हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी या तो एक एडवाणी, मुझे पूरा पता है, वो दोनों में से एक की कृपा से वो सीएम हो गए. जब सीएम हुए, उनके सौगंध विधि हो गई, गवर्नर ने करवा दी, तो उस दफे मैं गांधीनगर गया था. ओ नरेंद्र भाई, ओ नरेंद्र भाई, वो तो सुनते नहीं, क्योंकि वो मॉब होता है ना, टोला भीड़ होती है, तो दौड़ते दौड़ते, तो मैं तो दौड़ नहीं सकता. बस वो डी एल पटेल दशरथ भाई, डी एल पटेल हमारे नेता में के कर्मचारी, वो ग्यारहवीं कक्षा में थे, वो साथ में पढ़ते थे. अच्छा। वो नरेंद्र भाई, वो एस सी पटेल आपको बुला रहे हैं. तो नरेंद्र भाई पीछे लौटे, वापस लौटे, दो चार स्टेप पीछे मुझे मेरे चरण स्पर्श किए, मैंने के हाथ में मैंने आशीर्वाद दिए, ये मुझे याद आता है.
1: पीएम मोदी को आप कब से जानते हैं?
3: हम बचपन से, यानी धोरण चार से हम साथ में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है, उसी के अंदर धोरण 4, 5, 6 और 7 तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया.
1: मतलब आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ प्राइमरी स्कूलिंग से साथ में?
3: हाँ, हम प्राइमरी स्कूल से ही, धोरण 4 से हम साथ में हैं, 4, 5, 6 और 7 तक प्राइमरी स्कूल, जो आज प्रेरणा स्कूल बनी है, उसी के अंदर हमने साथ में एजुकेशन लिया. आरएसएस की फी दे के हम मेंबर बने, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते 3 दिन के बाद मेरा रुपया वापस आया और मैं मेंबर न बन सका. लेकिन उस वक्त मोदी साहब ने मुझे बताया, जब तुझे नहीं बनाते तो मैं भी मेंबर नहीं बनता. लेकिन मैंने बोला कि भाई, तेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है, मेरे पास भी चड्डी पहनने को नहीं है. आरएसएस वाले अपनों को 2 चड्डी देते हैं 1 रुपये में, तो 2 चड्डी लेके आओ, 1 चड्डी मुझे देना. तो मोदी साहब बहुत हंसे बचपन में, और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं. और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब सीएम थे, तब मैंने गुजरात के अंदर उनके ऑफिस में ये बात लगाई थी, और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है, कि 1 चड्डी की मैं लेने के लिए तुमको आरएसएस में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा. लेकिन मैं, मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया, लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका.
4: आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे। मित्रों, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने 25 साल तक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मोदी जी एकमेव नेता है जिन्होंने 25 साल तक लगातार जनादेश को प्राप्त करकर, हर चुनाव में विजय प्राप्त करकर, जनता के आशीर्वाद प्राप्त करकर ये काम किया है।
5: आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे कैसे कालखंड में केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली, जब नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने देश के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच रखी। ऐसे में आज उनके जन्म दिवस पर उनकी कर्मभूमि बनारस में, काशी में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
6: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम सब यहाँ पर 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में हमने प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है। एक गाना भी लॉन्च करेंगे जो हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया है और शाम को हर दिल्लीवासी अपनी मन से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक सुभाशीष का दिया जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जलाएगा, आशीर्वाद का दिया प्रभु चरणों में, ये कामना करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव हमारे इस देश की सेवा करें और स्वस्थ जीवन और उनका समृद्ध भारत जो उनका सपना है उसको साकार करें।
4: साथियों, आज की ये सुबह ये बहुत खास है। आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूं।
0: We have sort of my colleague joining us from Vadnagar. We are talking about multiple celebrations and many initiatives that are being inaugurated today in order to mark the birthday of Prime Minister Modi. Talk us through this, bike yatra that's going to start in a little while from now. And there are going to be two of them simultaneously, one from Vadnagar to Varanasi and one from Varanasi to Vadnagar. Talk us through the 10 states they're going to be crossing and the messaging that's being put out. And on the other side, of course, the semiconductor, focus of the Prime Minister, this is the 5th edition, keeping in mind all the kind of messaging that's been put out by the BJP in regard to the focus of what has really been of importance to Prime Minister Modi, whether having that aarti that was held by the Home Minister and the Chief Minister of the State of Gujarat, to of course now we're going to be having that kalash of water that is now going to be given to the bikers as well.
1: Yes. Well, absolutely, Divya. Like you mentioned that where right now NDTV is

0: मैं ये सोच के उठती हूँ कि मैं आज कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखूंगी। और ट्रेनिंग तो सब सेम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है वही आगे निकलता है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आज और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। लाइफ में भी और बॉक्सिंग में भी गिव अप नहीं करना। अगर हम हार मान जाएंगे तो ना तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही बॉक्सिंग, क्या किसी भी गेम में नहीं आगे बढ़ सकते।
1: मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर

केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितिन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओस, डेलीगेट्स और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमिकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है और संयोग

देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में, ठीक 10 दिन पहले, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात

बाकी थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइन से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई है, और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं, वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है। लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है, और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एनी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है।
साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका के कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया, इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आए, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों,
आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते दो वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा एआई से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप एआई पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां है वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है।
भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मैं ये सोच के उठती हूँ कि मैं आज कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखूंगी। और ट्रेनिंग तो सब सेम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है वही आगे निकलता है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आज और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। लाइफ में भी और बॉक्सिंग में भी गिव अप नहीं करना। अगर हम हार मान जाएंगे तो ना तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही बॉक्सिंग, क्या किसी भी गेम में नहीं आगे बढ़ सकते।
1: मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ। हेलो, कहाँ से आई तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना,
0: हैप्पी बर्थडे।
2: थैंक यू, हाथ मिला।
3: थैंक यू,
0: चॉकलेट दे।
1: चॉकलेट दो,
4: चॉकलेट।
1: चॉकलेट कहाँ है तुम्हारा?
3: हेलो सिंधु,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
1: और क्या,
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगे। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी।
5: देखो बत्तख पानी में तैर रही है, इनको कितना मजा आ रहा है।
6: हेलो हेलो,
5: मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी इसी स्टेडियम से, और मैं यहाँ पे तब से ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। रोहतक से लिवरपूल तक का सफ़र काफ़ी टफ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो मेरे बेसिक कोच हैं विजय हुडा, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को मोटिवेट भी किया स्टार्टिंग में। तो मतलब ये तो है नहीं कि प्लेयर हर बार जीतता ही है, हारता भी है, तो हारने के बाद जो साथ देता है वो एक कोच ही या फिर फैमिली वाले ही होते हैं, बाहर वाले तो बस बातें बना देते हैं कि हार गई है, लेकिन एक कोच को ही पता होता है कि उसने कितनी ट्रेनिंग की है खिलाड़ी ने और कितना मतलब स्ट्रगल किया है उसने। अब सबको मेरी मतलब कि जीत का तो पता है कि मैं लिवरपूल में मैंने मेडल जीता, लेकिन उसके पीछे का किसी को नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो बहुत टफ था।

एक छोटे से गांव रुड़की गांव से हूँ, तो गांव में तो लड़कियों का यही रहता है कि उसकी जल्दी से शादी कर दें या फिर घर का काम सिखा दें, ऐसा ही

0: अगर हम स्ट्रगल सोच के हम रह जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोलते कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करूँगे। लोग काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरी बेटी ब्लाइंड है, उसको मैं हॉस्टल नहीं, उनको मैं हॉस्टल नहीं भेजूँगी, क्या वो क्या कर लेगी जाके भी, उसको वैसे भी शादी करके भेजना है। लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच कभी एक पेरेंट्स को नहीं रखना चाहिए।
1: जल्दी दो,
0: बच्चों को दे दो। नहीं नहीं, मेरा मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ।
1: मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं और हम 4 बहन भाई हैं। और एक मतलब कि प्लेयर को निकालना, प्लेयर की डाइट भी और वैसे भी इक्विपमेंट के भी बहुत सारे पैसे लगते हैं उन सारी चीज़ों में। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनको। मैंने फर्स्ट नेशनल 2016 में खेली थी और मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया था। फिर उसके बाद और ज़्यादा मतलब कि घर वालों का भी थोड़ा और ज़्यादा साथ मिला। बॉक्सिंग में जैसे 10 वेट कैटेगरी है, गर्ल्स में, बॉयज़ में, मैं 48 में खेलती हूँ, फर्स्ट वेट में खेलती हूँ।

जब मैं पैदा नहीं हुई थी 2001 में, तभी जब मैं मम्मी की गोख में थी, तभी 7 मंथ के, तब भी पापा छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको लगा है कि मेरा भैया भी जो है वो भी डेफेंडा में ब्लाइंड है, ना सुन पाता है, तो उसके लिए उसको लगा कि मेरा दूसरा बच्चा भी ऐसा होगा, तो ये सोच के वो चला गया। तो उसके बाद मैं पैदा होने के बाद जब मैं 1 साल की थी, तब वो लेने आया था, पर मम्मी ने दिया नहीं, क्योंकि जब मुश्किल के वक्त में वो साथ नहीं दिया। तो अभी मैंने 1 साल उसको बड़ा कर दिया है, और अभी तो मैं अगर 1 साल में कर सकती हूँ तो मैं लगभग और भी साल में कर पाऊँगी बोल के ये सोच के मम्मी ने बोला मैं अपना बच्चे को नहीं दूँगी बोल के बोल दिया। तभी मम्मी ने काम करना शुरू किया, दूसरे के घर में खाना बनाना, ऐसे ही हम लोग को बड़ा किया, मतलब इतना एजुकेशन भी हेल्प किया है, हर चीज़ में हम लोग को हेल्प किया।

0: बचपन से तो उसने खेल स्टार्ट कर दिया था छठी सातवीं क्लास तक। और बच्चे जाते थे पड़ोस से, भाई मैं भी खेलने जाऊंगी। स्टेडियम बना था यहाँ गाँव में, तो सभी बच्चे खेलने जाते हैं। बोला मम्मी मैं भी जाऊंगी। मैं भाई जाओ। फिर इसने देखा कि मैं तो बॉक्सिंग खेलूंगी, मुझे पसंद है खेलना, कैसे बॉक्सिंग खेलते हैं। तो भाई बच्चे देखे जब ऐसे खेलते हैं, तो भाई जब मैं पता चले कि पापा तो पहले तो कुछ नहीं कहते, बाद में मना करने लग गए थे कि भाई ऐसे बच्चे को नहीं खिलाते, और बोल देते कहीं चोट लग जाएगी आँख नाक में। फिर ये बोले नहीं मैंने तो यही गेम करना है तो करना। फिर मैं चलो भाई कर ले।
1: I just passed down my 10th standard and I was not able to tell to my parents that I am building this kind of venture, because if I would tell my parents, they will definitely tell no, you should not do this, because you should focus on your education first, then after completing all the education you focus on whatever you want to be. But I was so convinced from inside that this is a problem, if I wouldn't solve now it could be impacting many lives across the country.
2: ये इंडियन ड्रेस है, प्लेइंग ड्रेस, ड्रीम होता है हर किसी को, नहीं मिलता ये पहनने के लिए, लेकिन मुझे मिला है पहनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लड़ता है इसको पहनने के लिए, और हर किसी का किस्मत नहीं होता है, लेकिन मेरे किस्मत ने मेरा साथ दिया मुझे लगता है। मेरा जर्सी नंबर 1 है। ठीक है सर, बाय
3: बाय
2: बाय बाय सबको। Thank you. Yeah, so left. भैया बस नंबर 70 रहने से बता देना, 75 और
4: 78।
2: हाँ मोतीनगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती है, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन के पर्पज़ से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वर सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ ब्लाइंड, हाउ विल यू एबल टू प्ले, but that I shown into action.

0: if our Indian youth or Gen Z is so-called what we say, our Indian strength is our youth, first point, because we are in number, we are the biggest youth population of the world. If you see a decade back, China was having on the position one for youth population. But China have made the youth not as a liability, but as an asset with an right skills at right point. If our Indian youth adapt right skills at right point, this is the right time. I believe humko US banne se nahi, humko India banne se koi nahi ruk sakta.
1: अभी तक भी लोग जानते नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट क्या हुआ है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा सा फेमस हुआ है कि हाँ, मतलब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, लड़कियाँ भी खेलते हैं, ऐसा अभी तक लोगों को पता चला है. इतना उससे पहले किसी को पता नहीं होता था कि ब्लाइंड क्रिकेट भी है. हाँ, बॉयज़ के लिए है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो नहीं है कुछ भी. लेकिन ये वर्ल्ड कप ने हर चीज़ पता कर दिया लोग.

0: वो क्या है या नहीं है।
1: मतलब सोचती थी मैं कि लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं शायद जीत पाऊंगी, मेरे को ये था कि पता नहीं कब मैं भी जीतूंगी। तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं लिवरपूल में जीती, बहुत मतलब इमोशनल हो गई थी मैं काफ़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था रिंग पे कि मैं मतलब कि मेरा हाथ उठा तो मेरे को मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी कि क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं कुछ सेकंड के लिए। तो फिर थोड़ा नॉर्मल हुई फिर।

मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और इस वेट में भी रहने के लिए मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार गोल्ड आना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है।

0: चलो चलते हैं फिर इवनिंग ट्रेनिंग पे।
1: Barakhamba Modern School, Delhi. As I am from Delhi team, all Saturday, Sunday I come for practice. Because of this, I am winning the World Cup.
0: अब हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं और आज की ट्रेनिंग करेंगे अब थोड़ी देर में स्टार्ट।
1: दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा चलो अभी इसने बॉल छोड़ दिया तो अभी आने वाला है। सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। यू कैन सी द बॉल एंड यू कैन हियर द साउंड ऑल्सो। This ball is the main thing which, through which we play. First, we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. Ball जब छोड़ देते हैं ना तो हम लोग को at least हम गिनती करते हैं, एक गिनती करते हैं और आवाज़ में आवाज़ मतलब ball की आवाज़ हम सुनते हैं, focus करते हैं।
2: विकसित भारत विच अवर मोदी जी इज प्लानिंग 2047 इज समथिंग विच विल टेक अवर इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल।
1: व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूंगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ। व्हेन आई सो दैट girls are playing, then I just feel myself that why I can't play, I also can play. If they are able to play, then I also.
0: हार जीत तो चलती रहती है और एक अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी।

0: नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
1: आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है।
2: He's a very smart man and a great friend of mine, actually, a great leader.
3: With Modi, he's great. Prime Minister, he's great.
4: Prime Minister Modi, true friend of Australia and a very dear friend of mine.
5: Dear Prime Minister, I want to thank you so much for your friendship. Hans loves you.

0: I think you've got support from almost everyone. Thank you so much for coming here. All the best.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
0: Of course, please. Let's get our next innovator on the stage. Please welcome Sambalpur, Odisha se Space Fields Private Limited ke innovator Apurva.
3: Namaskar, sir.
0: Hi, Apurva. Kaise hain aap?
3: All well, sir.
0: Welcome to Vande Bharat.
3: Thank you so much.
0: Ready with the pitch?
3: Sure.
0: Mentors are right there. And your time to shine starts now.
3: Okay. Namaskar, mentors. Mera naam hai Apurva Masuk. I am the founder and CEO of Space Fields. मेंटर्स, आपके फोन्स में जब बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है या स्क्रीन पे स्क्रैचेस हो जाते हैं तो हम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन नहीं खरीदते हैं, हम उसकी बैटरी को रिप्लेस करके या नया डिस्प्ले लगा के वो नई जैसी हो जाती। कुछ ऐसा ही करती हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ। कोई भी रॉकेट या मिसाइल कितना दूर जाएगा यानी कि रेंज, कितना तेज़ी से जाएगा यानी कि स्पीड, कितना वेट कैरी कर पाएगा यानी कि पेलोड, ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी उसकी फ्यूल पे। ये फ्यूल को हम प्रोपेलेंट या प्रोपल्शन कहते हैं। ये प्रोपेलेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि दिवाली के आतिशबाजियों में यूज़ होने वाला बारूद। दिवाली के पटाखे जब आप एक दो साल यूज़ ना करो तो वो ख़राब हो जाती हैं। कुछ उसी तरह ये रॉकेट्स और मिसाइल्स अगर 10-15 साल तक यूज़ ना हो तो उसकी प्रोपेलेंट एक्सपायर हो जाती है, नतीजा पूरी मिसाइल बेकार। भारत में आज कई लाखों करोड़ों रुपए के ऐसे रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड आर्मामेंट हैं जो ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे निर्भर हैं। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट इंडिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन दिस फील्ड। बट ये सब स्टॉक में रखना भी बहुत ज़रूरी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स। पर जब सालों पुरानी खरीदी हुई डिफेंस स्टॉकपाइल की प्रोपेलेंट्स एक्सपायर कर जाए तो टैक्स पेयर्स के अरबों रुपये दांव पर लग जाते हैं। टैक्स पेयर्स के इन्हीं पैसों को बचाने के लिए और भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी को बूस्ट करने के लिए हमने शुरुआत की स्पेस फील्ड्स। स्पेस फील्ड्स में हम कई ऐसे नए सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे आरएनडी करते हैं जो एग्जिस्टिंग रॉकेट या मिसाइल की एक्सपायर्ड प्रोपेलेंट को रिप्लेस करके देश की डिफेंस इन्वेंट्री में नई जान डाल देती है। हमारे प्रोपेलेंट से मिसाइल्स की रेंज और स्पीड बरकरार रहती है, इनफैक्ट अपग्रेड भी होती है, पुराना स्टॉक दोबारा यूजेबल होता है और देश और देशवासियों के अरबों रुपये की बचत भी होती है। As a young company, we are 4 years old. हमने काफ़ी progress इस direction में किया है and armed forces का भरोसा भी हासिल किया है। आज Space Fields के पास 50+ membered R&D team, 30+ patents, 15+ defense and aerospace customers and 45,000 square feet R&D facility भी है। हमारा vision है कि हम अपने innovation से भारत के defense assets को truly indigenous, sovereign and sustainable बनाएं। ओडिशा के छोटे से शहर से शुरू हुआ ये सफ़र आज देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत और आत्मनिर्भर करने का संकल्प बन चुका है। एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस चैलेंजिंग एट क्रूशियल मिशन, वी आस्क फॉर योर सपोर्ट एंड पार्टनरशिप एंड अ फंडिंग ऑफ 8 crores. थैंक यू सो मच।
4: तो अपूर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स ऑन योर जर्नी एंड इन फैक्ट वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप्स इन यू नो इन स्पेस डिफेंस एंड यू हैव चोजन अ वेरी यूनिक यू नो वेरी फोकस्ड यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच इज वेरी you know, as we all know, like it's very in need of the hour for the whether it's the forces or like all the customers you serve. So I'll ask a technical question and explain your technology. Matlab, what is different from a regular, you know, solid propellants or regular rockets, and also how, on a global scale, how do they compare?
3: जैसे fuel में आसान भाषा में बोले mileage, तो कितना देती है गाड़ी? तो कुछ उसका comparable parameter propellant में specific impulse, which is ISP. तो कोई भी rocket का डिज़ाइन अराउंड ISP होता है, तो हमारे प्रोपेलेंट से 20-30% इंक्रीज इन बैलिस्टिक परफॉर्मेंस या ISP मिलती है। यूजुअली हम कस्टमर बैकवर्ड्स हैं, तो जैसे कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती है हम उस तरह से प्रोपेलेंट केमिस्ट्री खुद की डिज़ाइन करते हैं। कई बार जैसे डिफेंस में रिक्वायर्ड होती है स्मोकलेस प्रोपेलेंट, कि कोई ट्रेल ना हो प्रोपेलेंट पे, सो दैट IR ट्रैकिंग एटसेट्रा कैनॉट बी डन। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड। तो करेंटली हमारा मेन कोर कॉम्पिटेंसी है कि हम एनर्जेटिक्स में या प्रोपेलेंट केमिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड काफ़ी R&D करते हैं, एंड देर इज़ नो कंपेरेबल एस्टैब्लिशमेंट इन द कंट्री दैट डज इट।
4: अमेजिंग अमेजिंग। व्हाट काइंड ऑफ यू नो

0: प्लीज।
1: और आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ ऐसे इनोवेटर्स जो टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का फ्यूचर लिखना चाहते हैं। गुरुग्राम से ड्रोनवर्स, जो इंडिजीनियस ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से भारत की सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। इंदौर से इलेक्ट्रिका एनर्जी, जो एआई के जरिए बैटरीज को स्मार्टर और सेफर बना रहा है। ग्रेटर नोएडा से वोल्टवर्क्स, जो इंडिजीनियस ईवी टेक्नोलॉजी के साथ भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को पावर दे रहा है। मोरबी गुजरात से रन मुक्ति ग्रिड टेक्नोलॉजीज, जो भारत के पावर ग्रिड्स को सिक्योर बना रहा है। और नोएडा से इनक्रेडिबल डिवाइसेस, जो इनोवेटिव मेडटेक के जरिए हेल्थ केयर को और अफोर्डेबल बना रहा है।
2: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
3: हमारे इनोवेटर्स ने दिखा दिया कि इनोवेशंस के लिए हमेशा हाईटेक फॉरेन लैब की जरूरत नहीं होती। कभी कभी असली सॉल्यूशंस तो हमारे देश की मिट्टी और ग्रास रूट की तकलीफों से भी मिल जाते हैं। हमारे मेंटोर्स के सारे स्कोर्स अब हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में जा चुके हैं। इस वॉल्ट में सिर्फ स्कोर्स और नंबर्स नहीं है दोस्तों, इसमें है भारत के कोने कोने से आए सबसे बेहतरीन इनोवेटर्स की उम्मीद और सपने। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे इनोवेटर्स में से किसे मिलेगा कैश प्राइज और खुद गौतम अदानी जी से मिलने का मौका, जल्दी पता चल जाएगा। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं भारत के नए कल में।

0: था से बचपन में, और जाके तुम बोलता है तो मैं सभ्य बन जाता हूँ, और उस दिन से वो सभ्य बन चुके हैं। और ये बात मैंने 2009 के अंदर जब CM थे तब मैंने गुजरात के अंदर उनकी ऑफिस में ये बात लाई थी, और हम दोनों जन बहुत हंसे थे कि दौलत खान तेरी बात सही है कि एक चड्डी की मैट लेने के लिए तुमको RS में भेजा था, आज पूरे गुजरात के धनी हो, तो मुझे उन्होंने वादा किया था कि तू रिटायर होकर आ जा, तुझे भी आधा गुजरात दूंगा। लेकिन मैं मेरी फैमिली कंडीशन की वजह से, उन्होंने मुझे अहमदाबाद भाजपा के संगठन में भी लेटर दिया, लेकिन मैं फैमिली कंडीशन की वजह से मैं जा नहीं सका।
1: Meanwhile, a special birthday greeting for Prime Minister Modi at the Semicon event. A warm message for the Prime Minister. Take a look.
2: वैसे जन्मदिन तो मनाता नहीं हूँ, लेकिन आज आपने मेरे जन्मदिन को चीप कर दिया।
3: सर, एक बात
2: मैं
3: आपको बोलना
2: चाहिए। जी। अरे वाह, वाह वाह, ये तो आज मेरा नहीं, आज आप ही का बना। क्या नाम आपका?
3: प्रियंका
2: जी का जन्मदिन आज मनाया। तो आज दो जन्मदिन, एक विश्वकर्मा जी का है, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, और आप लोग जो काम करते हैं वो विश्वकर्मा का वाले का आधुनिक काम है, और प्रियंका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देते हम लोग।
1: Chief ministers and minister in the cabinet of Prime Minister Narendra Modi have been in fact going out of their way to wish the Prime Minister. Take a look.
4: आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे। मित्रों, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने 25 साल तक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मोदी जी एकमेव नेता है जिन्होंने 25 साल तक लगातार जनादेश को प्राप्त करकर, हर चुनाव में विजय प्राप्त करकर, जनता के आशीर्वाद प्राप्त करकर ये काम किया है।
5: आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जन्मदिन है। मैं सर्वप्रथम देश के प्रधान सेवक को उनके यह जन्मदिन पर बधाई देता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं, यशस्वी होने की कामना करता हूं। साथ ही साथ आज उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में हमारा जो अभियान चल रहा है सेवा संकल्प अभियान का, उस अभियान का शुरुआत आज हो रहा है। आज रक्तदान के माध्यम से देश भर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान महादान के मंत्र से इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
6: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और श्री चंद्रबाबू जी नायडू और श्री चिराग जी पासवान LJP के नेता और श्री पंकज जी चौधरी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें, वह आजीवन अस्वस्थ रहें और साथ ही साथ भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को ताकि प्राप्त किया जा सके।
7: सितंबर 17 माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और अक्टूबर 7, 2001 के दिन वो मुख्यमंत्री जी का पद संभाले, तब से लेकर आज तक हर पद में चुने हुए एक पोजीशन में वो बैठकर सेवा कर रहे हैं इस देश का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारे सरकार NDA के द्वारा हर NDA पार्टनर के साथ रह करके हम इस पर्व को सितंबर 17 के से लेकर के अक्टूबर 7 तक कुछ न कुछ जनता के हित में कार्यक्रम सेवा के रूप में करने के लिए हम तैयार किए हैं।
8: मैं बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा से श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में भगवान विश्वकर्मा के पावन चरणों में नमन करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: गोल्ड रश ऑन द फील्ड
2: इंडियाज चैंपियंस आर रेडी
1: द बैटल्स एंड द ब्रेक थ्रूज फ्रॉम द अरीना टू द पोडियम
2: एशियन गेम्स 2026
1: गो फॉर ग्लोरी ओनली ऑन एनडीटीवी
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब व्हाट टाइम इज द मेडल सेरेमनी
4: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 पीएम
5: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
6: Kia. Movement that inspires.
7: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger. Bolder. Teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Season announcement.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: और प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
5: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia. Movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।

मैं जहां भी जाता हूं, मोदी नहीं जाता, हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं।

मैं जहां भी जाता हूं, मोदी नहीं जाता, हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं।

0: directed towards the Clean Ganga mission. It became one of the most memorable examples of how clothing associated with a political leader can acquire a larger public and cultural significance. But Modi's promotion of Indian textiles has not been restricted to what he wears. There has also been a deliberate effort to place Indian craftsmanship in the hands of visiting world leaders. During diplomatic engagements, the Prime Minister has presented foreign dignitaries with Indian shawls, textiles, handicrafts, and region-specific works of art. These gifts are more than diplomatic souvenirs. They put India's weavers, artisans, and traditional craftspeople at the center of India's cultural diplomacy, taking local craftsmanship from the workshop to the world stage.
1: Prime Minister is a representative of masses, right? And it's always nice when a leader that masses look up to is well-dressed. So, and it had actually become a fashion that a politician was supposed to look drabby.
2: You think the current Prime Minister is cool? His style?
1: I think the style is certainly crisp. It's aspirational for the people. You actually see people of my father's generation trying to emulate how he dresses up. And so, it's certainly, I'd not use the word cool, but certainly aspirational. It is aesthetically appealing. It's aesthetic. So, and as a person of aesthetic, I'd say that some things are being done well. Yeah.
0: This has also dovetailed with the larger push for Make in India, vocal for local and local to global. The emphasis has been on encouraging Indian consumers to value indigenous products while simultaneously creating international visibility for India's craft and textile heritage. From handloom communities to traditional artisans, the objective is not simply to preserve heritage, but to make these traditions economically viable and globally relevant.
3: साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन-जन जुड़ गया था। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम के वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो
4: वी नीड टू टेक सेवरल इनिशिएटिव्स टू मेक हैंडलूम फैशनेबल This can be done by bringing new designs and color schemes, constantly evolving and innovating, ensuring quality. Fashion and design education in India also needs to be reoriented. We need to make our handloom tradition the centerpiece of fashion for India and the world.